कर विसंपर का सा सकल काल का किया तमासा। जवन काल योगी सिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आदि अंत वेकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसहि को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी सेवकन को सब सुख दियो सत्रन को पलमो बंद कियो।

पहचानै घट घट के पट पट की जानै जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह जा पारा जब या करख कर तो हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

वर्णत भिन्न भिन्न दोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही उपाय जेर जसे तिजकीनी उत्पुज खान बहुर रच नीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिंह भयो संख कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंप हुए आगुगा स्वरूप सुयंप

करो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जियस भुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निक नह है, रक्षा हो ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट समझा हिमे हरि हो ताके ताप तंक मह हर हो, रित सिद्ध कर्मो सब वही, दुष्चाश व सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास देता है उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग।

सुवैया पाए गहे जपते तुमरे तपते को हुआ करे नहीं आने राम नहीं पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न माने सिमर शास्त्र वेद सब बपेद कहे हम एक न जाने हो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब कीटे नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु साहिब, वाहिगुरु।

0: अगेन सारे परिवारों का, टीचर साहबाना का, तो सारिया का धनवाद। ठीक है, बच्चों हम बेनती है कि राम दे नाल नमस्कार करके सतगुर सच्चे पातशाह नूं ते थल्ले तुसी जाके अपना जल पानी छक सकते हो। आओ हुण आनंद साहब की बाणी का पाठ होगा, उपरंत अरदास बेनती जो फ्राइडे यूथ दरबार है वो आप संगत को बेनती करते हैं कि वध तो वध अपने बच्चों को लेके आओ। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। महाराज कृपा कर, आओ आनंद साहब की बाणी के नाल जुड़ते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।
1: वाहगुरु साहिब जीओ राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया परपूरे।

जो संसार विकार संसे मैं तरेहु ब्रह्म ज्ञानी जिसे ही जगाए पियाए रास अकथ कथा तन जानी।

समस्तं वरणामि समस्तं वरणासे अंगल अनामि समस्तं निवासे निरकामं विभुते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं वरणासी सुधर्मं विभुते सदा सचदानं सत्रं वरणासी करिमलकुनंदा समस्तं निवासी अजाए बा बबूते गजाए बाग्नि में हरियं करियं करिम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वंभव सुभं सर्वदा सर्वजुगते सर्प

अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुर परम बिचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए।

गाए। गुण गावे गुण उचरे गुण में सवै समाए। नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रभ आए।

हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दिड़ाया मन अनत न काहूं डोले जन नानक हर का दास है गुर सत जन

थपी सालु सर्ग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ अमीर।

जोग हर नाम जपत कछ नाय वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन के ओढ़ सदानी, हर प्रताप

शोर है। जेको जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा, नानक ताके बल बल जास। सगल पुरख में पुरख प्रधान,

जंगल पर्वत पर पवन नहीं होत वहां उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संसाई सो आवे ना चीत, जो बहराई तो सिव प्रीत। बलुआ के ग्रह भी

जय प्रसाद तेरे रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तो दर के मान पावे नानक पसेती कर जावे जय प्रसाद आरो कंचन देही लेवलावत राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर।

ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे रसाच रे मन मेरे तू ता शिवराच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपै जपै सो नाम।

ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपो कछु न किन हूं लिया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इन कह कछु न हाथ। श्लोक आगम गात पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवता, साजना की अचरज कथा। अष्टपदी साधक संग उजल होत, सासंग मनल सगली खोत। साधक संग मटे अभिमान, साधक संग प्रगटे सुज्ञान। साधक संग बुझे परम नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्माई समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फूले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा। साध संग होए सब की रैन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग नकत मुतावे, साध संग अस्तित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुष्ण समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सुना ही बैर, साध के संग ना बिगा पैर। साध के संग ना ही कुमंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही होताप, साध के संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध का संग न कभूता वै, साध का संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहै, साधु का संग अजर सहै। साध का संग बसे थान ऊंचे, साधु कै संग पह महल पहुंचे। साध का संग दृढ़ सब धर्म, साध का संग केवल पार ब्रह्म। साध का संग पाए नाम निधान, नान साधु कै कुर्बान। साध का संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीट मीत कुटुंब निस्तार है।

साधु के संग पाव पलायन सा संग अमृत गुण गायन साधु के संग सर्वथान गम नानक सगत के संग सफल जन्म साधु के संग नाही कछ काल दर्शन पेटत होत निहाल साधु के संग लुखत हरै साधु के संग नरक पर हरै साध के संग इहा हुआ सुहला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथ जावे पार ब्रह्म साध रित बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे परम मिठा साधु के संग घट घटीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिट सब रो नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तिता बखियाने साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद ना पाए श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवन पेखे कस बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व का शोक

जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभु आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल गिरी ना तुमरस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी की उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के वैसो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परिवार।

कथे न जाद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ती सरोग, और तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ आपर्स सगल निस्तार। अष्टपति मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स। पारत्रा रूप न पेखे नेत्र, साध के टैसा संघेत। करण सुने काहू की निंदा, सत्य जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखे पर हरे, मन की वासना मन ते डर। इंद्र जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। बैसनो सोज सुपर सो प्रसन्न, बिसन माया ते हुए पिन। कर्म करत हुए न करम, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्त संग्रह छ। मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अपने नाम जपावे, नानक वो वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत कर संग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मानते बिन से सगला परम कर, पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पाप अमल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मंतन अर्प बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। राम नाम सारस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण सिमरत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल। चाहो वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चाहो वरना में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, सासन पावे जन को। कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुगत पाथर को उतारे। सर्व रोका उगत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। काहू जुगत किते न पाई है धर्म, नानक जिस मिले तिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास तिन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर है। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म तावे, जीवन मुख सो कहावे। तैसा हरक तैसा उसोग, सदा अनंत नहीं वियोग। तैसा सोवरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत ऐसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताई साई जुगत, नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ। आपे करण करावण जोग, प्रभु भावे सोई गुण होग। पसरे आप होय अंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार अवार। नारक रचना प्रवृचि, बहुविध अन्य प्रकार। अष्टपति कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमे उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे। कई कोट नवतन नाम तावे, नान करते कंत न पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट पिगातम निकोर। कई कोट पर दर्प को ही रहे, कई कोट पर दुख न करे। कई कोट माय श्रमाए, कई कोट पर देश प्रमावे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट से जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी। कई कोट पंखे सर्व पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल। कई कोट ससिय सु नखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धारे, नान जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सात, कई कोट भेद पुराण सिमर रसासत। कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना

0: कोट किए चिरजीव है, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थी वह, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिगराच, सब ते नेर है सब हूं ते दूर, नानक आप लिपत रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीव मरे, कई कोट बहुत जोनी फिरे, कई कोट बैठ थी खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तै तै राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म है पार उन्हते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिले प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक कंकार, कई कोट किने बो पहांत, प्राप्त हुए प्रमाय समात, ताकांत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, इन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पे सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सास सास समारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कुएं, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महिर सोय अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन में था पुथा पणहारा, अंत नहीं किस पारावार,
1: कर कर देखा है अपनी वडियाई नानक सब मेरे असमाई प्रभ पावै मन उगत पावै प्रभ भगतां पाथर तरावै प्रभ पावै बिन शास्त्री राखै प्रभ भगतां हर गुण भाखै प्रभ भगतां पुत्त उधार है आप करे अपन विचार है दोहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरन आवै कहो मानुखते क्या हुए आवै ज्योतिष भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले ज्योतिष भावै सोई करे अनजानत बिखिया मह रचै जे जानत अपना आप बचै भरमे भूला दह दिसतावै निमुख माहि चार कुंड फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भक्त ते नानक तेजा ना मिले खिन मै नीज कीट को राज पार ब्रह्म गरी निवाच जाका दृष्ट कशुना आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बखशीस ताका लेखा गणै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष भावै सोई फणथियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चंद व्यवहार कबहू उप आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हार कबहू नृत करै बहु भांत कबहू सोय रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की हो त्रबाल कबहू होय बह बड़ राजा कबहो पे खारी नीच का साजा कबहू अब कीर्त मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ इशनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनको जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवन चावै ज्योतिष भावै सोई होए नानक दूजा वरना कोय कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नामृत एक रंग सदा बसहे पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सतकुरबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अशपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जोबन मंत सो होवत बिष्टा का जंत ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਭਉ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖਨ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਧਰਮੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ, ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁ ਖੂਪਰ ਕਰਿਆਸ, ਪਲ ਪੀਤਰ ਤਾ ਕਉ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਣਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਕਿਸ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਵਾਰੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਮਾਨ, ਸੋ ਜਣ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ, ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਨਿਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਬੈ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਹਿ ਚਲ ਨਾਹੀ ਜੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸਿੰਘ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ, ਸੈਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ। ਅਣਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨਮ ਨੁਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਖਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਇਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ, ਮਰਣ ਬਿਨਸੈ ਅਵਣ ਜਾਏ।

के पास। तिस सेवक के कार्य रास सेवा करतो निकामी, जिसका उद प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे। नानु सो सेव गुरु की मातुले, बीज बसवे गुरु का मन मानाए। सो सेवर परमेश्वर की गत जाना है, सो

कार्य पूरा मत पूरी मत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनु सबल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा से परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिसमन बस।

संत कृपा ते अनंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहू ना झूरे।

मन ते सिमरत क्यों आलस कीजै। जय प्रसाद सब हस्ते असवारी, मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना, राख परवे प्रभ अपने मना। जिना तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसहे ते आई। तिसहे ते आए जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करहे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा नूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनहे करन ना, जे प्रसाद पेखे बिस्माद।

आप सोए, आप जपाए जपे सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए परगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्ब निदान प्रभ तेरी मया, पो कछु न किन्हु लया।

साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए द्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कहो सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और तारे जो अंतर नाम, सर्ब मै पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारे, नानक हो अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, मिथया नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर तिरया रूप न पेख नितर, साध की टैल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस कुमंदा, गुर प्रसाद बिखिया परहर, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच लोक ते रहत, नानक कोट मदे को वैसा परस, वैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवै निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाशै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तने

कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बै संतर

संत का दुखियों बिललाए, ज्यों जल बिहूण मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुवाड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का

के वृंदावनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूरे उप्रव्यापन विस्थार एक ते पहे कराद प्राशत गए मंत्रंत्र एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्र

अष्टपदी जब अकार उकाशना दृष्टि ता पाप पुन तब कहते होता जब तहरी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्ष शोक कह के सह व्यापत जब अपने आप पाप पार ब्रह्म तब मोह कहा कसोत परम

असुर कब कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय तब शिव सख्त कहु कित ठाए जब अपह आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मरण कौ कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कौ कसोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र को

अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता।

कैसा थे। सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रवे आप मिला। मिट गए बैर पहे सवरेन, अमृत नाम साध संग ले। सुप्रसन्न पहे गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की।